बोल जी वाहे गुरु, एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय, वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाउ सिमर श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आइया जस डठे सब दुख जाए। तेक बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे ताए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। बोल जे पंजा प्यारिया सोहा साहिब जादियां, चालियां मुकतियां हठियां जापियां तापियां, जिना नाम जपिया वंड छगिया। देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता, तिना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जे जिन्ना सिंघा सिंघड़िया ने धर्म हेत शीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आ रिया नाल चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाही, तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोल जी पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। बोल जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी।

0: सुवारी है, का सुवारी है, का सुवारी है।
1: कौड़िया पे ही करना की कला पे ही तैतारी है, देखे की ता अपना धर कच्ची पक्की सारी है। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है, जिसके जीव प्राण है के उसाहे मन विसारी है। अपना हथिया अपना पे ही का सवारी है, आपे ही का सवारी है।
0: जिन्ना पेटे आ

एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिहे रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत केहे अचल मूरत अनभउ प्रकाश अमित ओज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहे सहान गणिज तेर पवन महीप सुर नर असुर

कवनन कर्म नाम वर्णत सुमत अंत न पावत देव सवे मुन इंद्र महाशिव जोग करी फोन वेद बरांच बचार रहे हर जाप न छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ निहाल करी रामदास गुरु जगतारन को गुर ज्योत अर्जन माहे धरी रामदास गुरु जगतारन को गुर ज्योत अर्जन माहे धरी इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम तिना सो ऐसा हर त्याई है मेरे जीअड़े ता सर्व सुख पावे है मेरे मना जप मन सत नाम सदा सत नाम हालत पलत मुख उजल होई है नित त्याई है हर पुरख निरंजना जह हर सिमरन पया तह उपाद गत कीनी बड भागी हर जपना जन नानक को गुर इह मत दीनी जप हर भव जल तरना तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी ना तुम डोलो हो ना हम गिरते रख लीनी हर मेरी दर्शन प्यासी दिन सरात चित बो

कै जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल।

अवर जंजाल तेरा काहू न काम जियो। जीवन देवा पार ब्रह्म सेवन एहो उपदेश मोको गुर दीना जियो। तेस सियोन लाइय हीत जाको किश नाही बीत। अंत की बार ओह संग न चले। मन तन तू आराध हर के प्रीतम साध। जाके संग तेरे बंधन छूटे। गोह पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण। अवर आस काश पटल ना कीजै।

गह पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण अवर आस काश पटल न कीजे सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई

जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। तनासरी महला पांजवा कार शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुनहो संत प्यारे बिनो हमारे जियो हर बिन मोक।

मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

रंग परंग अनेक ना जापन करते बा जिया दर्जियो सबक जान ला सब तेरा वस तेरा कर पला।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबयो वाच बेनती चाओ पाई हमरी करो हाथ द रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ द मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कार द करिया सब बैरन का आवाज संगरिया पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख्यो हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ द मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जू करिया हो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जच्छन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझी अहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सिवकन को सिवगुन सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चिट्टी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान काट काट के पाट पाट की जान जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब आकर्ख करत हो कबहू तुम मैं मिलत देह तर सबहू जेते बदन सृष्ट सब तार आप आपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अदील अनाद असंभ ताका मूड उचारत पिदा जाको पेव न पावत विदा ताका कर पाहन अनुमानत महामूड काछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप आपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एका रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा
अंडज जे रज सेत जकीनी उत पुज खान बाहुर राच दीनी कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवात उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तोज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह आय है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाह छुए सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फासते ताहे उबारा जिन नार नाम तिहारो कहा

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सवै बहुभेद कहें हम एक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहे ओ सब तो।

राम कले महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गावने आइया, सबदू ता गावहो हरि केरा मन जिने वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनहो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा, घर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वस्या वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहो जिस दिया एह वडियाइया। कह नानक सुनो संत हो शबद धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शबद तित घर सुभागै। घर सुभागै शबद वाजे कला जित घर धारिया। पंचदूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन काओ, से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ तित का।

हम प्रभ पाया उत्तरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर।

सुन यार हमारे सज्जन, एक करां बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे, हाँ फिराऊं को जंतिया तिस दस प्यारे, सिर तरी उतारे एक भोरी दर्शन दीजै, नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे, एक तिल पीना तीरी जै, प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना, चात्रिक जिवै तिसंतिया, जन नानक गुर पूरा पाया, सगली तिखा बुझंतिया।

कृपाल हजूर नानक जीवा संता तूर दोए कर जोड़ करी अरदास चरण पखार कहां गुणतास प्रभ दयाल

भरत षाड भिख भिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखहु शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की

मोहे मस्कीन प्रभ नाम आधार, खाटण का हर हर रोजगार, संचण का हर एको नाम, हलत पलत ताकै आवै काम।

सुख संतन के बिन सी चंद, जह साध संतन हो वह एकत्र, तह हर जस गावह नाद कवित्र।

और हिकमत हुकम खुआर पौड़ी नदर करें जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया ए जियो बोते जन ब्रह्मया ता सतगुर।

का किया सकल जहान, सेवक सेव हैं कर्म चढ़ाओ, भिन्नी रंजना मन चाओ, सिखी सिखिया गुर विचार, नदरी कर्म लंघाए पार, कोलू चरखा चक्की चक, थाल वारोले बहुत आनंद।

0: पहला पड़ पड़ गड्डी लेती है पड़ पड़ परिये साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड़िए खा पड़िए जेते बर्स बद पड़िए जेते मास पड़िए जेती हार जा पड़िए जेते साथ नानक लिखे एक गल होर हो मैं चखना चाख महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया तेता कढ़िया बहुत तीर्थ भवया ते तो लवे।

0: की तय दोस्ती। सब जग चलनहार कूड मिठा कूड माख्यो कूडो बेपूर नानक वखाणे बेनती दुध बाज कूड़ो कूड महला पहला।
1: सचता पर जानिए जारी दे सचा होए कूड़ की मल उतरे।

तिनके दुख को टिक दूर गए। मथुरा जिन अमृत नाम पियो, ए पद्धत ते मत चुके रे मन, भेद विभेद न जान बियो। पर तच हृदय गुर अर्जन कै, हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। पर तच हृदय गुर अर्जन कै, हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।

0: पलक और समुंदर में बूढ़े कभू मिटे नहीं रे पछतायो। तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो। जपया जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जपया जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो।
1: कल समुंदर पै रूप प्रगट हरे नाम उदाहरण बस है संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण। निर्मल भेख अपार तास बिन अवर ना कोई मन बच जिन जान्यो भयो ते समसर सोई। तरन गगन नव खंड मै जोत स्वरूपी रहो पर पन मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जुन पर तख हरा। अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै नित पुराण बच है वेद ब्रह्मा मुख गावै। अजय चवर सिर ढुले नाम परमेश्वर लिहियो गुर अर्जुन सिर सतर आप परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो। हर बंस जगत जस संचर्यो सो कवन कहे श्री गुरु मोयो।
2: देवपुरी में गयो आप परमेश्वर पायो। हर सिंहासन दियो श्री गुरु तै बैठायो। रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपै। असुर गेते भाग पाप तिन पीतर कंपै। काटे सो पाप तिन नरों के गुरु राम दा जिन पायो। शतर सिंघासन प्रथमी गुर अर्जन को दे आयो। काटे सो पाप तिन नरों के गुरु राम दा जिन पायो। शतर सिंघासन प्रथमी गुर अर्जन को दे आयो।
3: अजय गंग जल टल सिख संगत सब नावे नित प्राण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे। अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जुन सिर छतर आप परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर कुर गुर रामदास हर पै गयो। हरि बंस जगत जस संचर्यो सो कवन कहे श्री गुरु मोयो। हरि बंस जगत जस संचर्यो सो कवन कहे श्री गुरु मोयो।
4: वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोक कहत मज सोध जिसे दही पात खाए जियो। देख रूप अत अनूप मोह महा मग पई किनकनी शबद चरतकार खेल पाए जियो। काल कलम हुकम फात कहो कौन मेट सके ईश्वम ज्ञान ध्यान तरत ही ये चाहे जियो। सत साच श्रीनिवास आद पुरख सदा तू ही। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु। जियो। प्रभ दातो दातार परयो जाचक इक सरना, मिले दान संतरेन जेहे लग पौ जल तरना। बिनत करो अरदास सुनहो जे ठाकुर पावे, देहो दरस मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे। बलियो चराग अंधियार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म।
5: श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा सत जुग जिंत्रु पर, श्री प्रहलाद भगत धरियं हस्त कमल माथे पर धरियं। लख रूप जी लख्या ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई। गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म देह निस्तारो। गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया न कोए। गुर प्रसाद प्रभ पाईऐ गुर बिन मुकत न होए। गुर नानक निकट बसै बनवारी तिन लहना था।

मखै निद चौह जुग गुर सेवा कर फल लहियं बंधे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं परतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पो।

अहनस सहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय, होवे सिफत खस।